मैंने सुना है कि जब लोग प्रे करते हैं या जोर से हंसते हैं, रोते हैं या फिर किस करते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं। क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ दिल से महसूस की जाती हैं।

0: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ,
1: क्यों
0: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है बता दूँ क्या
1: क्या

0: आओ ऐसी मोहब्बत करे, मर भी जाऊं तो जिंदा रहे। यस, आओ ऐसी मोहब्बत करे, मर भी जाऊं तो जिंदा रहे। कम लेट अस फॉल इन लव लाइक सो मच दैट इवन आफ्टर वी पास ऑन दैट आवर लव विल स्टे अलाइव। थैंक यू सो मच दे रिकी नाइट ऑल प्राण महावीर एंड आवर सिस्टर आशा एज वेल दैट हैज कॉल थ्रू विताश वितेश मोतीलाल ऑफ रिजर्वर हिल्स। थैंक यू सो मच माय ब्रदर। एंड साथ ही साथ हमारे प्रोफेसर दौलत रामदास साहब, शुक्रिया भाई साहब, भी मोहब्बत है आपकी। एंड देन ऑफ कोर्स हाउ कैन वी आल्सो नॉट फॉरगेट अनिल रामस्वरूप, दीज आर आवर रेगुलर्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बींग सपोर्टिव ऑफ द शो। यस, दिस इवनिंग आई एम डूइंग ए ट्रिब्यूट टू टू जाइंट्स ऑफ द गजल वर्ल्ड एंड वन ऑफ देम ऑफ कोर्स इज भूपिंदर सिंह। यू हैव जस्ट हर्ड हिम विद मिताली एंड द नेक्स्ट वन ऑफ कोर्स विल बी मेहदी हसन साहब।
1: Hi, South Africa. It's Carol Shabalala, your first lady of sport. If you appreciate world-class sport and a great occasion, the Hollywood Bets Durban July is worth your attention. The theme for 2026 is Country Allure, which sees the rustic style of the countryside meet the cosmopolitan cool of the city. On Saturday, 4 July, it all comes together at Hollywood Bets Parade Hall, Africa's greatest horse racing and social event. I'll see you there.
0: It's time for our Sunor Siko segment of the program, and I know it's proving very, very popular. This evening I'm going to be doing a few words. Khuda Hafiz. Yes, you must have heard me say this quite a number of times when I close the show. Khuda Hafiz means goodbye and may God protect you. You can also say Alvida. Alvida also means the same thing. It means goodbye or may God protect you. Khuda Hafiz, God protect you. Alvida, goodbye. Then प्यास, प्यास of course is thirst. मुझे शिद्दत से प्यास लगी है। I am very thirsty. प्यास is thirst. भूख, भूख of course is hunger. You know when you're hungry, you say मुझे भूख लगी है। I am hungry. सजा, सजा, सजा is punishment. मैं आपको सजा देने वाला हूँ। I am going to be punishing you. सजा, दर्द. दर्द इज पेन, मुझे दर्द हो रहा है मेरे मेरे पाँव में। यू नो इन माई लेग आई एम फीलिंग पेन, दर्द। बयान, बयान इज स्टेटमेंट। मेरी बयान सुनकर आप बड़े खुश हो रहे हैं। आफ्टर लिसनिंग टू माई स्टेटमेंट यू सीम टू बी वेरी हैप्पी। बयान इज स्टेटमेंट। दरमियान, दरमियान इज नियर और इन बिटवीन। आप मेरे दरमियान हैं। यू आर क्लोज टू मी। दरमियान, नियर टू मी और क्लोज टू मी। अफसाना, अफसाना लिख रहा हूँ दिले बेकरार का। आई एम राइटिंग ए स्टोरी अबाउट माई हार्ट दैट इज ऑल फ्लटेड। अफसाना इज अ स्टोरी, टेल। यू नो वी शुड से एसॉप्स टेल्स या एसॉप्स टेल। अफसाना इज टेल। बयाबान, बयाबान इज अ ब्यूटिफुल वर्ड, मीन्स विल्डनेस। यू नो मैं बयाबानों में भटक रहा था। आई वॉज यू नो रोमिंग अराउंड फ्रीली इन द विल्डनेस, बयाबान। ईमानदार, ईमानदार मीन्स ऑनेस्ट। ये लोग ईमानदार लोग हैं। दीज आर ऑनेस्ट पीपल। फकर, फकर इज प्राइड और प्राउड। यू नो व्हेन अ पर्सन इज प्राउड यू से इसको बहुत फकर है। दिस मैन हैज गॉट अ लॉट ऑफ प्राइड। फकर इज टू बी प्राउड और टू हैव अ लॉट ऑफ प्राइड। फलसफी, फलसफी यू नो फलसफी इज अ फिलोसफी। यू नो व्हेन अ फिलोसफर इट्स फलसफी। फरियाद, मैं आपसे फरियाद कर रहा हूँ। आई एम कंप्लेनिंग टू यू। फरियाद। गुजारिश, गुजारिश मीन्स रिक्वेस्ट। यू नो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। आई एम रिक्वेस्टिंग समथिंग ऑफ यू। गलत फहमी, गलत फहमी मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग। ये मेरी गलत फहमी थी, दिस वॉज माई मिसअंडरस्टैंडिंग। गुफ्तगू करना, गुफ्तगू करना इज टू एबल टू चैट। गुफ्तगू, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। आई एम चैटिंग टू यू। हयात, हयात इज लाइफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत या भगवान आपको लंबी हयात दे। God Almighty give you long life, hayat. Ittifaq, ittifaq se meri aap se mulaqat hui. By coincidence I met you. Ittifaq means to meet, it's coincidence. And let's do a two line poetry for you. Dur hai aap se to kuch gham nahi, I know Cass is going to love this. Cass, my child, I know you are listening. Dur hai aapse to kuch kham nahi. Dur rehkar bulana, bulane wale kam ham nahi. Dur hai aapse to kuch kam nahi. Dur rehke bulana, bulane wale ham nahi. Roz mulaqat na ho to kya hua? Roz mulaqat na ho to kya hua? Aapki yaad aapke mulaqat se kam nahi. Let me read that again for you. Dur hai aapse to kuch gham nahi. Dur hai aapse to kuch gham nahi. Dur rehkar bulne wale ham nahi. Roz mulaqat na ho to kya hua? Aapki yaad aapki mulaqat se kam nahi. Although I can be far away from you, it doesn't mean that I've forgotten you. Roz mulaqat na ho to kya hua? I don't have to meet with you every day. Aapki yaad aapki mulaqat se kam nahi. Just thinking of you is as good as I'm meeting you. Let's listen again to Bhupinder Singh.

0: Yeah.
1: रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए. Who else but of course शहनशाह ग़ज़ल, and that was मेहदी हसन साहब, जो अपनी मखसूस अंदाज में इस ग़ज़ल को पेश कर रहे थे. और बहन फातिमा ऑफ पोर्ट एलिज़ाबेथ, यस द लेडी दैट रियली नोज ग़ज़ल एंड नोज आर्टिस्ट एज वेल, शुक्रिया. इट इज़ योर मोहब्बा माय सिस्टर एंड ग्रेट यू नो सप्लाई अस दोस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज वी डोंट नो इट ऑल. इट्स आवर गुड लिसनर्स आउट देयर दैट आल्सो आर असिस्टिंग अस विद सम वेरी वेरी यू नो इंफॉर्मेशन दैट यू नो वी डोंट नो आवरसेल्फ. थैंक यू सो मच फातिमा of Port Elizabeth. We have our community announcement. The Amir family invites you to the annual Shodahe Karbala Jalsa, and this will take place on the 4th of July after Salatul Asr. Venue 63 Ashvale Close, that's Rider Vale in Unit 9. The program commences, like I said, after Salatul Asr. Khatm al-Quran, Zikr, Naat, Mankabat, lecture by Mufti Abdullah Khurolo Sahib, Niaz Langar will be served, and there will be Mehfil al-Sama by leading artists, and the man to contact will be Nabi Amir on 07337867890733786789. Remember, it's Yad-e-Shodan-e Karbala Jalsa, and it's the Amir family of Ashvale Close, Rider Vale Unit 9. That will take place on 4th of July. That is this coming weekend, this coming Saturday to be exact. And then we have the Urus of Hazrat Sayyah Baba Qasim Baba Rahmatullah Ali. At least Hazrat Sayyah Baba, I've got his own mixed up. My sincere apologies. It's not Hazrat Sayyah Baba. It's the Astana Sayyid Ghulam Rasool. Invites all to a Milad al-Nabi, Gyarvi Sharif, and Urus Sharif of Hazrat Baba Fariduddin Ganj Shakar, and Hazrat Shah Sayyid

0: गुलों में रंगे भरे बादे नौ बहार चले. आई नो मेनी ऑफ द फैंस ऑफ मेहदी हसन साहब वुड हैव वांटेड मी टू प्ले द ओरिजिनल बट सैडली आई कुड नॉट पुट माय हैंड ऑन अ यू नो गुड कॉपी ऑफ दैट कलाम एटलीस्ट ऑफ दैट गजल एंड आई हैड टू प्ले गायत्री अशोकन बट दे यू आर अनडाउटेडली शी हैज डन जस्टिस टू दिस गजल. You know, and I must say a big thank you to everyone of you that are listening and have sent in such good words regarding the way she presented the song. Thank you, Behen Ayla. Behen Ayla, yes. And of course, Behen Ayla says her late husband was a great fan of Mehdi Hasan Sahab and Bade Ghulam Ali Sahab as well. Thank you there, Susan Modley, for tuning in. Shahid Mia Sahab, and saath hi saath Babu Gora Sahab bhi is program ko samat farma rahe hai.
1: Experience pure country allure as a VIP at this year's Hollywood Bits Durban July with Spina Zonke. Stand a chance to win VIP experiences or a share of 1.2 million rand in cash. Bet 2 rand or more on selected slots to enter. This is your moment. Release your spirit. Release your victory. Release your glamour. Spina Zonke. Bet now.
2: T's and C's apply. Hollywood Sportsbook is a licensed betting operator. No persons under the age of 18 years are permitted to gamble. Winners know when to stop. South African Responsible Gambling Foundation toll-free counseling line 0800 006 008 or WhatsApp help to 076-675-0710.
0: आपके गुलजारे तखयुलात को मजीद महकाने के लिए इबी महमूद हाजिर है इस खूबसूरत शाम का खूबसूरत तोहफा गुलदस्ता लिए हुए. तो लीजिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं एंड दिस टाइम राउंड वी आर गोना बी लिसनिंग टू मेहदी हसन साहब.

0: अगर है तो जमाने की जरूरत क्या है, और किसी के दिल में समाने की जरूरत क्या है। ब्यूटिफुल गजल एंड वेरी वेरी ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड।
1: द काउंटडाउन टू अफ्रीका'स ग्रेटेस्ट हॉर्स रेसिंग एंड सोशल इवेंट इज ऑन सैटरडे 4 जुलाई। द हॉलीवुड बेट्स डर्बन जुलाई टेक्स ओवर हॉलीवुड बेट्स ग्रेवल रेस कोर्स इन अ डैजलिंग सेलिब्रेशन ऑफ कंट्री अलोर, वेयर स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट टेक्स सेंटर स्टेज। योर जनरल एक्सेस टिकट ऑल्सो अनलॉक्स एन इनक्रेडिबल लाइव म्यूजिक एक्सपीरियंस फीचरिंग ग्रैमी अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट जेक्स वांटलिनी एंड देन सॉन्ग and some of Mzansi's biggest stars like Mikasa, Will Lindley, Tamara Day, Vicky Sampson, Supreme 3, Will Reyes and Angel Masibugo. Country charm meets rustic glamour in a celebration like no other. Be part of one of South Africa's most iconic events. Get your tickets now at Ticket Pro.
0: Yes, you're absolutely right, Fatima. But Elizabeth Salma Aga did act in the movie, you know, and of course, that beautiful ghazal she sang, Dil Ki Arman Aansu Mein Reh Gaye, beautifully sang. And thank you so much out there, like I said, for giving, supplying us information. And also we have Shanti Maharaj also tuned in. Thank you so much, Shanti. And don't forget to tune in immediately after the 7 p.m. news, when Rivaj Soni will bring you Talk at 7.